आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: दो पड़ोसियों से,
1: क्या
0: झांके न खिड़कियों से,
1: दरवाजा खटखटाया लगता है कोई आया,
0: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब नहा रहे हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, सुनो तो,

0: भी बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, मेरा एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: हेलो
1: यस बेटा।
0: हेलो भैया,
1: आप लोग कैसे हो बहन?
0: हम सब बिल्कुल ठीक है, मम्मी पापा सब ठीक है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो भैया।
1: क्या
0: आपको याद है ना परसों क्या है?
1: तेरा बर्थडे है क्या बहन?
0: नहीं भैया, परसों रक्षाबंधन है और हम लोग चाहते हैं कि आप इस बार पक्का आए। आप पिछले 2 सालों से नहीं आए हो भैया।
1: बहन देख, मैं यहाँ पर बहुत बिजी हूँ,

खुशियां।

शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you. आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे संडे स्पेशल में सुनिए स्टार मूडी चॉइस और कीजिए दिए गए मूड पर आधारित गाने की मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं फिर से लेकर अंतरा मस्ती। यस, मस्ती करने वाले हैं हम एक से बढ़कर एक गानों के साथ, जैसा कि हमेशा की तरह इसमें दो राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड में अंतरे के शब्दों से आपको गाने भेजने होते हैं व्हाट्सएप पर, और जो सेकंड राउंड होता है आपको अंतरे के बोल बताए जाते हैं, उन बोलों से गाने को पहचान के लिखना होता है, व्हाट्सएप पर ही भेजना होता है। तो आज जो भी काम होंगे, जो भी करना हो, वो आपको व्हाट्सएप पर ही करना होगा। तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9135841232, यानी 9135841232। फिर से नंबर नोट कर लीजिए, एकदम आराम से बता रहा हूँ आपको, 9135841232। यस, इस नंबर पे ही आपको आज के अंतरा के शब्दों से गाने भेजने हैं। लेकिन फिलहाल मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए, आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

वो भी साउथ अफ्रीका से। बहुत बहुत वेलकम करते हैं, वालेकुम सलाम भाई जान। और उनके बाद हमारे एमडी फैज आलम जी हैं और अरुण मंडल जी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और ये विजय, क्या नाम है इनका, योगेंद्र प्रजापति जी, वेलकम करते हैं आपका भी। बाबूलाल अंजाना जी, वेलकम करते हैं। राजू यादव जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और यानी प्रियंका जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और हमारे ये गोपाल यानी पटीदार जी, वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ रॉय पर्वत जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और अशोक देशमुख जी, बहुत बहुत वेलकम है सर जी आपका भी। और अजय भगत जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और सर्वजीत सेठी जी, वेलकम है आपका भी। काजल झक्का जी, मतलब यानी काजल झा जी, बहुत बहुत वेलकम है काजल झक्का जी। और ईशु भगत जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ आरिफ सिंधी जी, आपका भी वेलकम है, वालेकुम अस्सलाम। और राजेश गौतम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और जरा व्हाट्सएप में देखता हूँ। और सोनू पटेल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सोनू पटेल जी। और व्हाट्सएप में देखते हैं कौन कौन से दोस्त जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप में जुड़ने वाले हमारे सर्वेश भगत जी हैं, वेलकम करते हैं। पूजा भास्कर जी, मिसाल रंगत जी हैं, वेलकम है आपका भी। और संध्या पटेल जी हैं, अनिल कश्यप जी हैं, वेलकम है। इमरान भाई जी हैं और आरजे वंशिका जी, मतलब जितने भी दोस्त सुन रहे हैं सभी का वेलकम करते हैं। तो पहला गाना आज का है, स्टार्ट कर रहा हूँ आज के प्रोग्राम का। सबसे पहला ये रहा, यहाँ से शुरू होगा अंतरा।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। इस अंतर में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेजेंगे सिर्फ व्हाट्सएप पर 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे, सिर्फ व्हाट्सएप करना है।

0: और काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के, कि काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के, और ये नजरें जमा के बैठे हैं रस्ते पे यार के। दिल ने कहा जो देखे जलवे हुस्न यार के, लाया है कौन इनको फलक से उतार के, ये काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के, ये काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के, और नजरें जमा के बैठे हैं रस्ते पे यार के। दिल ने कहा जो देखे जलवे हुस्न यार के, लाया है कौन इनको फलक से उतार के। वैसे मेरे पास सबसे पहला मैसेज किनका पहुंचा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रियंका जी, ओके जी, और हमारे यानी के संदीप, क्या नाम है, अनिल कश्यप जी, हाँ ओके, इनका भी है। अजय भगत जी हैं, और इमरान भाई जी हैं, अशोक देशमुख जी हैं, मिसाल अंगद जी हैं, अकबर खान जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, और संजय पटेल जी हैं, और सुनीता गोप जी हैं, सर्वजीत सेठी जी हैं, और अब्दुल जब्बार जी हैं, और यहाँ पे आरिफ सिंधी जी हैं। मतलब सभी का वेलकम करते हुए सीधे कॉल लगाते हैं प्रियंका जी। बहुत बहुत वेलकम करते हैं अंतरा मस्ती में। सबसे पहला मैसेज किया आपने, क्या बात है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
1: थैंक यू।
0: वेलकम जी, और कैसी हैं आप?
1: मस्त, चका चक।
0: अच्छा, आपने तो मेरा डायलॉग बोलने लगा।
1: वो सुन सुन के आदत हो गई ना।
0: अच्छा, अच्छी बात है।
1: हां जी,
0: तो बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई हैं आप?

0: चेहरे पे सबसे पहले ये गाना आता है, क्योंकि ये
1: जी,
0: बहुत
1: तो मैं
0: ही
1: भी
0: प्यारा
1: आपसे ये
0: गाना है।
1: कहना चाहूंगा कि एक्चुअली यानी कि दिल में उतरने के लिए तो इन चेहरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अब इन चेहरा देखेंगे तो आंखों से आंखें मिलेंगी, तभी तो दिल में उतरा जा सकता है ना, है कि नहीं?
0: ये सब तो हमें कुछ नहीं पता पर बट ये सॉन्ग बहुत अच्छा है।
1: okay.
0: हो सकता है ये सब होता होगा।
1: इंजॉय द ट्रैक, सुनवा दिया इस गाने को।

यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा, तो इस अंतर में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेजे 9135841232 पे, यानी सिर्फ व्हाट्सएप करना है आपको 9135841232।

थैंक यू सो मच। और सबसे पहला मेरे पास मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे अशोक कुमार जी का, क्या बात है, वेलकम करते हैं आपको भी। और उनके बाद सर्वजीत सेठी जी हैं, जाकिर खान जी हैं और गजानंद जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है। अकबर खान जी हैं और सुनीता गोप जी, राजेश कुमार जी, संध्या पटेल जी, राजेश गौतम जी हैं, मिसालंगा जी, अजय भगत जी और रूपचंद गोयल जी हैं और हमारे सर्वेश भगत जी, अशोक दसमुख जी, आरिफ सिंधी जी और प्रियंका जी, तो सभी का वेलकम करते हुए सीधे कॉल लगाते हैं।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत वेलकम करते हैं सर जी आपका अंतरा मस्ती में, और बहुत एक अरसे बाद आप आए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप?
0: अच्छा है सर।
1: अच्छा है तो आज बहुत
0: सब बढ़िया है।
1: बहुत दिन बाद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या बात है।
0: अरे शाम को नहीं रहते, घूमने निकल जाते हैं सर।
1: अच्छा, घूमने निकल जाते हैं।
0: अब 8-9 बजे आते हैं, तब तक फिर दूसरा प्रोग्राम शुरू, गाना सुनते रहता है, ऐसा नहीं है, वो प्रोग्राम तो चलता ही रहता है।
1: मुझे पता है कि आप सुनते रहते हैं, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि आप बहुत ही रेडियो के शौकीन हैं, बहुत दीवाने हैं।
0: सही बात
1: जी। और वो तो
0: रेडियो चलता रहता है आपका।
1: और सबसे बड़ी बात यह है कि आप तो वो आमीन सयानी के वो बड़े वाले फैन हैं कि उनका सारा रिकॉर्ड लिख कर रखा है। माय गॉड, सच में आपके पास वो डायरी मैंने देखी थी। हाँ, वो डायरी देखी थी आपकी, आपने मेरे पास भेजा था ईयर वाइज, मतलब गीत वाइज कौन यानी कि नंबर 1 पे था, नंबर 2 पे गाना था, नंबर 3 पे था।
0: अरे तो सर, तो फाइनल है सर, हम तो हर सप्ताह का लिख के रखे हैं सर।
1: अच्छा, हर सप्ताह का,
0: जो हर बुधवार को बसता था ना सर, हर बुधवार को बसता था, वो हम लिखते थे सब समय। हम जब देखिए फिफ्थ पढ़ते तब से हम शुरू किए हैं सर।
1: अच्छा,
0: वो सप्ताह का हर दिन का लिखा हुआ, हर सप्ताह का।
1: ओह माय गॉड, मानना पड़ेगा।
0: फाइनल लिस्ट आपको तो फाइनल लिस्ट का हम खाली भेजते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: वो हर सप्ताह का लिखा रहता सर, उसमें बहुत जैसे जितना पिटाए कुछ भी हो, वो 1 घंटा सुनना था 8-9।
1: मतलब इतनी दीवानगी, ओह माय गॉड,
0: इतनी दीवानगी, 8-9 सुनना है। हम लोग 3 भाई थे, तीनों भाई सुनते थे, हम तो छोटे थे, क्योंकि बड़ा भाई का ही आदत लगा हुआ था, बड़ा भाई भी सुनता, मझला भाई भी, तो हम भी सुनते थे।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा होता है।
0: अब बात बस जब तक चलता रहा बिना का, तब तक सुनते रहे सर। अब जिस दिन से बिना का बंद हुआ, उसे फिल्म देखना बंद हो गया बाहर में, हॉल में, मतलब घर में जो देखिए हॉल में बंद हो गया, क्योंकि गाना बजना नहीं था, सुनना नहीं था कि कौन गाना। पहले कहते कंपटीशन तीनों भाई में होता था ना।
1: अच्छा अच्छा,
0: कि आज बिनाका में जो 16-18 गाना बजा, किसका कितना देखा हुआ है।
1: अच्छा, ओहो, ऐसा भी था।
0: उसमें होता था ना सर, काहे कि वो तो बोलते था मीन सैनी साहब ना, कि भाई इस फिल्म को कहां पर कैसे फिल्माया गया है, उस चीज को तो हॉल में देखिए।
1: जी बिल्कुल,
0: तो उसको देखने से पता चलता था कौन गाना कितना फिल्म में कितना बजा, मेरा देखा हो कितना आपका देखा हो, कहने का मतलब।
1: हम समझ रहे हैं आपकी बात को। और एक चीज ये है कि मतलब यानी कि अगर आपने मुझे ढूंढा है तो वो मतलब वो यानी गीतमाला के जरिए ही आपने मुझे ढूंढा है।
0: आपको दूसरे ढूंढे तो सर, सही बात है। वो आपको देखे तो हमको लगा भाई जो टॉर अमीन सानी आ गया साहब।
1: नहीं, यानी उनका तो भाई मैं मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है, यानी वो आसमान है तो मैं जमीन हूँ, है कि नहीं। लेकिन फिर भी मैंने अपनी मतलब कोशिश की थी एक देने के लिए, है ना।
0: बहुत बढ़िया था सर, बहुत बढ़िया था। आप फिर आप तो उसको आगे बढ़ाया नहीं, आपने बोला था हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कहाँ बढ़ाए।
1: हमारे पास ये लिखा हुआ है, मुझे छुट्टी नहीं मिलती है कि मैं रिकॉर्ड कर सकूं, बस इतना ही समझ लीजिए। अब स्कूल से भाग दौड़ के अब मान लेते स्कूल से आता हूँ और सीधे यानी यहाँ पे ऑन एयर
0: प्रोग्राम में आ जाते हैं,
1: तो क्या मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं रिकॉर्ड करूँ। मेरे पास सारा यानी पड़ा हुआ है रिकॉर्डिंग, मतलब उसका स्क्रिप्ट मैं आपको भेजूंगा,
0: सब पड़ा हुआ है,
1: यानी आप इन पढ़िएगा, आप स्क्रिप्ट को इन पढ़िएगा, मतलब सारा स्क्रिप्ट मेरे पास लिखा हुआ है पूरा, मतलब यानी कि 2000 तक का, मतलब 2000 यानी कि 10 तक का इन पड़ा हुआ है, अब समझ लीजिए। सारा स्क्रिप्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन मजबूर है कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ, उसको मेरे पास समय नहीं मिल पाता, यही बात है। खैर कोई नहीं, बहुत सारी बातें हुई आपसे और बहुत दिनों बाद बातें हुई है। आज ये बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
0: वो सर दीवाना पिक्चर था ना, तेरी सी अदा पे
1: सनम, मुझको तो प्यारा है। इंजॉय करिए।

और यहाँ से शुरू होता है अंतरा। एक बात और बता दूं कि हमारे अशोक देशमुख जी जो है, मतलब उन्हें भी लिखने का बहुत शौक है और हर थीम पर उन्होंने गाने लिखा है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको।

वेलकम बैक। और मेरे पास सबसे पहला जो मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे सर्वजीत सेठी जी, लिखते हैं कि नो कॉल, मतलब कॉल मत कीजिएगा, लेकिन जो उन्होंने गाना है ना, उन्होंने जो भेजा है मैं वही प्ले करने वाला हूँ। एमडी जलील जी जुड़ चुके हैं और जाकिर खान जी हैं, इमरान भाई जी हैं और अनिल कश्यप जी हैं और प्रियंका जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, राजेश गौतम जी भी हैं और रूपचंद जी हैं, गजानन सुरकार जी हैं और सर्वेश भागा जी, काजल झा जी, अकबर खान जी, सुनीता गोप जी, अशोक देशमुख जी, संजय पटेल जी, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेज हैं। लेकिन फिलहाल गाना प्ले करता हूँ हम सर्वजीत सेठी जी का, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। तो इस अंतरे में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेज सकते हैं 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे व्हाट्सएप करना है सिर्फ।

0: बिल्कुल रंग भरे मौसम से रंग चुरा के। वैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, सभी का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सबसे पहला जाकिर खान जी हैं, अकबर खान जी हैं, गजानंद जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, और ये प्रियंका जी हैं, राजेश गौतम जी हैं, अजय भगत जी हैं, संध्या पटेल जी हैं, अनिल कश्यप जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, सुनीता गोप जी हैं, काजल झा जी, सर्वजीत जी हैं, मतलब बहुत से दोस्त हैं। सीधे कॉल लगाते हैं हम जाकिर खान जी को। बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती में जाकिर खान जी, कैसे हैं आप?
1: जी ठीक ठाक।
0: ओके, क्या बात है, बहुत जल्दी नंबर लग गया आज?
1: जी लग गया।
0: और स्पेशल कॉल से बाहर हो गया?
1: स्पेशल में भी लगा देना सर, कहना है मेरे पास
0: स्पेशल में। अगर आप यानी कि दो बार और आते हैं उसके बाद शायद हो सकता है।
1: कोशिश करेंगे,
0: है कि नहीं? ओके, फिलहाल बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
1: वही सर, ओल्ड इज गोल्ड, मैं तेरे प्यार में पागल।
0: ओके, एंजॉय कीजिए इस गाने को, बहुत प्यारा गाना है। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
0: और इसी गाने के लिए बहुत से दोस्तों का डिमांड था, अकबर खान जी है, मतलब बहुत से।

यहाँ से शुरू हो रहा है अंतर, तो इस अंतर में आए शब्दों से आप गाने लिख के भेजे मुझे 9135841232 पे, यानी 9584312 पे व्हाट्सएप करना है सिर्फ।

बहुत सारे, ओ माय गॉड क्या बताऊं। सबसे पहले जो मेरे पास मैसेज पहुंचा है किनका, हमारे गजानन सलोकार जी का, ओके। और गजन जी के बाद हम यानी कि प्रियंका जी हैं, अशोक कुमार जी हैं, अकबर खान जी हैं, जाकिर खान जी हैं, एंड सर्वजीत शेट्टी जी हैं, अनिल कश्यप जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, अस्मिता गोप जी हैं, अजय भागा जी हैं, राजेश गौतम जी हैं, रूपचंद गोयल जी हैं, संजय पटेल जी हैं, सर्वेश भागा जी हैं, काजल झका जी हैं, MD फैज जी हैं, मतलब बहुत से दोस्त हैं, सीधे कॉल लगाते हैं।

0: बहुत बहुत वेलकम करते हैं गजानन सुलकार जी, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक हूँ सर जी, आप कैसे?
0: अगर यानी कि व्हाट्सएप पर जिसको प्रॉब्लम होगा मैं उनका नंबर पर भी कॉल कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ, आप बताइए।
1: बस मैं भी ठीक हूँ सर, प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: जी प्रोग्राम तो सुन रहे, मुझे पता है, और तभी तो सबसे पहले जवाब आपने दे दिया, एकदम लगता है गाने दिमाग पर आता है ना?
1: जब गाना सुनता हूँ सर जी, ये गाना मेरा फेवरेट गाना है।
0: अच्छा, फेवरेट गाना में से है। जी ये गाना सभी का फेवरेट हो सकता है, क्योंकि भाई गाना है ही इतना प्यारा कि फेवरेट हर किसी का होगा, है कि नहीं?
1: हाँ हाँ बराबर है।
0: ओके तो बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
1: जब तक रहे तन में जिया वादा रहा वो साथी, आशा भक्ति की सुमुद्र।
0: इंजॉय कीजिए गाने को, मैंने प्ले कर दिया।

0: जब तक रहे
1: तन में जिया,
0: तन में जिया जब तक रहे।

जब तक रहे तन में जिया। और ये सबसे पहले मेरे पास मैसेज पढ़ता हूँ, अनिल कश्यप जी का और प्रियंका जी का, जाकिर खान जी का और आरजे वंशिका जी का और सुनील कुमार जी का, अकबर खान जी का, गजानंद जी का। एमडी जलील जी लिखते हैं कि अंतरा मस्ती कैसे खेलते हैं, अच्छा समझाते हैं, रुक जाइए। और रूपचंद जी हैं, अजय भगत जी हैं और राजेश गौतम जी हैं, अशोक देशमुख जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, संध्या पटेल जी, अशोक कुमार जी हैं और सुनीता गोप जी हैं, काजल झाका जी, एमडी फैजी, मतलब ओ माय गॉड बहुत से दोस्त हैं। सीधे मैं कॉल लगाता हूँ पहले इनको, कहाँ गए जी, अनिल कश्यप जी, ओके।

0: अनिल कश्यप जी बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती में। फाइनली नंबर आ ही गया आपका, कोशिश कामयाब रही। गुड इवनिंग, कैसे हैं?
1: बस बढ़िया सर, आप बताइए।
0: अरे हम तो एकदम झक्कास हैं, बोले तो चकाचक।
1: बस उसी उसी का जरूरत भी है। हाँ। और सर लगातार प्रयास में थे हम भी,
0: लगातार प्रयास में थे। नाम आपका आ रहा है यानी कि टॉप 10 में, मतलब, लेकिन नंबर आपका ऊपर नीचे हो रहा था, मतलब एक नंबर पर नहीं आ रहा था। अभी नंबर एक नंबर पे आ गया तो आपको कॉल भी मिल गया।
1: कोशिश करने वालों की हार कहाँ होती है?
0: बिल्कुल नहीं होती है, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। बहुत से दोस्त कहते हैं हमने एक बार ट्राई किया, नहीं आए तो लगता है कि नहीं आए। देखिए यहाँ पे मिली सेकंड का अंतर होता है ना, मिली सेकंड में मैसेज आने लगते हैं।
1: बाकी कितने लोग कहते हैं कि सर ये कर रहे हैं ऊपर नीचे, ऐसा कुछ नहीं होता है
0: मेरे पास। देखिए हमको गाना सुनवाना है, चाहे वो कोई भेजे, जो यानी सबसे पहले भेजेगा मैं उसे गाना प्ले करता हूँ ना। और तो कुछ यहाँ इनाम मिलता है नहीं, है कि नहीं? गाना ही ना सुनना है सिर्फ, चाहे वो किसी का भी सुनना है, जिनका पहले आएगा उनका गाना सुनना है
1: बस। और क्या, और बहुत खुशी हो रही है सर।
0: हाँ हाँ मुझे पता है, यानी झलक भी रहा है। और हाँ एक साहब पूछ रहे हैं, ये जलील जी, एमडी जलील जी के, ये अंतरा कैसे होता है समझ में नहीं आ रहा है। तो हर गाने का सबसे पहला जो यानी कड़ी होता है उसको यानी मुखड़ा कहते हैं, और उसके बाद एक म्यूजिक आता है, और म्यूजिक के बाद जो यानी पहला स्टेंजा प्ले होता है उसको अंतरा कहते हैं, है ना? उसके बाद फिर म्यूजिक होता है, फिर यानी कि उसके बाद वाला भी अंतरा होता है, यानी दोनों अंतरा होता है। और किसी किसी गाने में तीन तीन चार चार अंतरे भी होते हैं, लेकिन हर गाने में कम से कम दो अंतरे होते हैं, है ना?
1: दो अंतरे होते ही हैं। हाँ।
0: यानी कि कम से कम दो अंतरे होते हैं, और अधिक भी हो सकते हैं, तीन अंतरे, चार अंतरे, पांच अंतरे भी हो सकते हैं अगर ये लंबा गाना हो। जैसे एक एक मुलाकात जरूरी है सर, बहुत लंबा है वो, है कि नहीं?
1: या फिर गजलों में भी बहुत सारे अंतरे।
0: जी जी, चाहे वो यानी कि मुझे 9 लाख मंगा दे रहे, वो भी गाना बहुत लंबा है, उसके अंतरे बहुत लंबे लंबे हैं, है ना? ये चीज तो ऐसा होता है अंतरा जो, तो अब उन यानी कि अंतरे में जो भी शब्द आप सुन रहे हैं, उन शब्दों से जो गाना आपको आएगा याद, उन पर गाने लिख के भेज देना है। बहुत ही सिंपल सा है कि नहीं?
1: बहुत सिंपल है जी सर।
0: चलिए फिलहाल आप बता दीजिए, आप कौन सा गाना चुनकर लाए अंतरा के शब्दों से?
1: हमको गाना एक ओल्ड ही गाना है, सजना है मुझे सजना के लिए,
0: आशा भोसले की आवाज में।
1: जी,
0: एंजॉय कीजिए, सुनवा दिया।
1: थैंक यू सर,
0: वेलकम जी।

यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। तो इस अंतरे में आए शब्दों को ध्यान से सुनिए और अपना गाना जो आपको याद आएगा लिख कर भेजिए व्हाट्सएप नंबर पे 9135841232 पे।

और बता दूं कि 7:30 बजे से होगा सेकंड राउंड। और सबसे पहले मेरे पास मैसेज पहुंचा हुआ है यानी प्रियंका जी का, जागीर खान जी, आरजे बंसिका जी, अशोक कुमार जी, गजानन सलोकार जी, अशोक देशमुख जी, रूपचंद जी, अजय भगत जी, संजय पटेल जी, मिशाल अंगद जी, सर्वेश भगत जी, एम डी जलील जी, सर्वजीत सेठी जी, सुनीता गेव जी, मतलब बहुत सारे मैसेज। सीधे कॉल लगाते हैं प्रियंका जी को।

0: एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है प्रियंका जी, क्या बात है, दोबारा चांस मिल गया आपको।
1: हाँ, मिल गया बस।
0: और सबसे पहले आपने,
1: और आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं तो एकदम झक्कास
1: हूं। सब पूछते हैं आपसे कि आप कैसे, हम कभी नहीं पूछते कि आप कैसे हो, क्योंकि आप भी मस्त चकाचक ही रहते हैं।
0: एकदम झक्कास है, एकदम हम झक्कास है, एकदम यानी चकाचक है, एकदम बिल्कुल।
1: हाँ, लेकिन आपने सर वो जो स्टार्टिंग में जो सॉन्ग सुनाया था ना, आज वो गाने को नहीं मिला हमें।
0: मतलब कौन सा गाना?
1: वो वेलकम सॉन्ग सुनाते हो ना आप स्टार्टिंग में, वो नहीं सुनाने को मिला हमें। बहुत अच्छा लगता है वो सॉन्ग, हमें सुनाना है।
0: तो अभी सुना दीजिए, क्या करना है?
1: सुना सकते हैं, ऐसे कोई इशू तो नहीं है?
0: कोई इशू नहीं, सुना सकती हैं अभी।
1: अच्छा,
0: क्योंकि फीडबैक शामिल नहीं ना होता है आज, इसलिए अभी सुना सकती हैं।
1: नहीं, अब ठीक है, आप सुन लो फिर।
0: हाँ।
1: आज सुबह जब मैं जगी, हो आज सुबह

0: चुकी लगी।
1: सच में आपने ऐसा गाया। वैसे बता दीजिए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई है आप, ये भी गाइएगा तो गा दीजिए।
0: सर जब वो बोल रही थी ना कि हर अंग क्या मुझे सजना है, मुझे सजना के लिए हर अंग का रंग निखार लूं, तो रंग से गाना लेके आए सर।
1: ओके ओके बताइए।
0: जो कि इस तरीके से है, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो, परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का

0: रात भी है क्यों बहकी बहकी। वाकई में ये बहुत ही सुंदर सॉन्ग है और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग है, और वो भी स्पेशल फेवरेट सलमान खान का है ना, इसलिए
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: ज्यादा ही जोश में गा लिया। आप
1: ओके
0: यही सॉन्ग सुना दीजिए।
1: बिल्कुल मैं सुना रहा हूँ, एंजॉय कीजिए अपने गाने को, और ये गाना मेरा भी फेवरेट है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग।

दो ना प्लीज। और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। अंतरा में शब्दों से गाने मुझे लिख के भेज दे 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे। इंजॉय द ट्रैक।

0: और इस बार फिर से एक बार हमारे सर्वजीत सेठी जी का आया हुआ है, लेकिन इस बार मैं इनको नंबर पे कॉल लगाने वाला हूँ, क्योंकि नंबर पर तो कॉल लगा सकता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैं इनको नंबर पे कॉल लगाऊंगा। वैसे इन्होंने लिखा है नो कॉल, लेकिन इनसे बात करना जरूरी है, इसलिए मैं अभी कॉल लगाऊंगा। इनके बाद हमारे यानी जाकिर खान जी हैं, और रुबीना नाथ जी हैं, और सुनील कुमार जी हैं, अशोक कुमार जी हैं, अकबर खान जी हैं, गजानन जी हैं, और यानी कि प्रियंका जी हैं, और अर्धवंशिका जी हैं, और संध्या पटेल जी हैं, अनिल कश्यप जी हैं, अजय भगत जी हैं, विष्णु चंद्र जी हैं, रूपचंद जी हैं, और मिशाल अंगा जी हैं, और सुनीता गोप जी हैं, काजल झक्का जी हैं, रमेश जी हैं, और सर्वेज जी हैं, मतलब बहुत से दोस्त। सीधे कॉल लगाते हैं सर्वजीत जी को, नंबर पे लगाते हैं, शायद उठ जाए इनका कॉल मेरे ख्याल से। जी बहुत बहुत वेलकम है सर्वजीत सेठी जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया मंसल जी, नमस्ते।
0: और मुझे लगा कि आप इन नंबर पे कॉल रिसीव कर लेंगे आसानी से, इसलिए मैंने नंबर पे ही कॉल कर दिया।
1: जी जी सर।
0: हाँ, हमारे पास मेरे पास दोनों ऑप्शन है ना, इन नंबर पे भी कॉल लगा सकता हूँ और व्हाट्सएप पे भी लगा सकता हूँ, तो नो प्रॉब्लम, नो टेंशन।
1: जी जी सर।
0: है कि नहीं?
1: जी सर।
0: तो बताइए, अंतरा के शब्द से कौन सा गाना चुन कर लाए हैं आप?
2: समझ कर चांद जिसको आसमान।
0: ओके, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए, और गाना बहुत प्यारा है, सच में मुझे अच्छा लगता है ये गाना।

ओके जी, मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है यहाँ पे सुनील कुमार जी का, नंदलाल यादव जी का, और प्रियंका जी का, अनिल कश्यप जी का, जागीर खान जी का, और यानी पुष्पा जी जुड़ चुके हैं बहुत दिन बाद, बहुत बहुत वेलकम है। और यहाँ पे अशोक के पाल जी हैं, सर्वजीत शेट्टी जी हैं, रूपचंद जी हैं, अजय भगत जी हैं, संजय पटेल जी हैं, सर्व जी क्या नाम है ये सर्वेश भगत जी हैं, गजानंद जी हैं, अब्दुल जब्बार जी हैं, और कजल झक्का जी हैं, स्मिता गोप जी हैं, विष्णु जी हैं, मिसाल जी, मतलब क्या ही बोलो, बहुत से दोस्त हैं। तो सीधे कॉल लगाते हैं इनको हम, सुनील कुमार जी को।

0: बहुत बहुत वेलकम करते हैं सुनील कुमार जी बांका बिहार से। कैसे हैं आप
1: जी? नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: अरे हम तो एकदम झक्कास हैं, बिंदास हैं, फर्स्ट क्लास हैं, मजे में हैं। बोले तो लय भारी चकाचक गारंटी के साथ मजे में।
1: जी जी, धन्यवाद। और मजे में ही रहना चाहिए सर। और आप जब आते हैं तो हम लोग खुद मजे में हो जाते हैं और चकाचक हो जाता हमारा मिजाज।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। और आज बताइए, आज अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुनकर लाए हैं?
1: ये ओ मेरी महबूबा।
0: अच्छा, ओ मेरी महबूबा।
1: जी जी।
0: ओके, तो अगर गुनगुना सकते हैं तो गुनगुना भी दीजिए।
1: ओ मेरी महबूबा।
0: अच्छा।
1: महबूबा महबूबा,
0: क्या बात,
1: तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या।
0: ओहो।
1: पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की
0: खबर जाएगी,
1: खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा
0: क्या। एंजॉय कीजिए गाने को।
1: धन्यवाद।
0: और इस गाने के बाद स्टार्ट होगा सेकंड राउंड। बिल्कुल तैयार रहेंगे सेकंड राउंड के लिए।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे संडे स्पेशल में सुनिए स्टार मूडी चॉइस और कीजिए दिए गए मूड पर आधारित गाने की मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: दोस्तों, अब तक आप अंतरे के शब्दों से गाने के बोल लिखकर भेज रहे थे, लेकिन अब आपको अंतरे के बोल से गाने की पहचान करनी है और उस गाने के सही बोल लिखकर भेजने हैं, और साथ ही साथ जो गाना सुनना चाहते हैं उसके बोल भी अपने जवाब के साथ ही लिखकर भेजें इस मैजिकल व्हाट्सएप नंबर पर जो है 9135 84 12 32।

0: ओके जी, तो ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे। एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे। फिर मोहब्बत हुई, बस कयामत हुई। खो गए तुम कहाँ।
2: दोस्तों, आपने सुना अंतरा। अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना।

0: मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है यहाँ पे सुनील कुमार जी का और यानी कि प्रियंका जी का, ज्योति खटवड़े जी का और संध्या पटेल जी का, जाकिर खान जी का, सरोजी जी का, अजय भगत जी का। कॉल लगाते हैं सीधे सुनील कुमार जी को। क्या बात है सुनील जी, आ गए। बहुत बहुत वेलकम एक बार फिर से सुनील कुमार जी।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं?
1: जी बहुत अच्छे, और आपसे बात करने के बाद तो और अच्छे हो जाते हैं।
0: और यानी कि सेकंड राउंड में सबसे पहला भाई नंबर आप ही का आ गया, क्या बात है, पहला पहचान लिया आपने।
1: जी, आज जो है ना हम पे नेट बाबा मेहरबान है सर।
0: अच्छा जी, अच्छी बात है ना।
1: हाँ नेट आज मेरा फास्ट चल रहा है और गाने के बोल है जिंदगी बन गए हो तुम।
0: वो तो आप इन्हें सुनना चाहते हैं और वो गाना बताइए। हाँ, जो जवाब है
1: जवाब है, एक मिनट सर।
0: हाँ हाँ देख लीजिए देख लीजिए
1: क्या जवाब दिया तुमने। एक हसीना थी एक दीवाना था, किशोर कुमार की आवाज में, कर्ज फिल्म का गाना।
0: ओके, इंजॉय कीजिए गाने प्ले कर।
1: जी जी जी, धन्यवाद सर।

0: सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। जगमगाती हुई चांदनी रात है, रात है या सितारों की बारात है। जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है। एक दिन दिल की राहों में अपने लिए जल उठेंगे मोहब्बत के इतने दिए, मैंने सोचा न था।
2: दोस्तों, आपने सुना अंतरा। अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
0: और मैं स्पेशल कॉल भी करूंगा, बहुत से दोस्तों ने आज पार्टिसिपेट किया है।

बिल्कुल जिंदगी बन गए हो तुम। और मेरे पास सबसे पहला मैसेज आया है हमारे सरफराज पटेल यानी सरफू भाई जी का, वाह क्या बात है। और उनके बाद मेरे पास सही जवाब आया हुआ है किन का, यानी कि नाम है प्रियंका जी, ओके। अनिल कश्यप जी का बिल्कुल जवाब सही है और अजय भगत जी का भी सही है और ज्योति खड़वड़े जी का भी सही है, साथ ही साथ एमडी जलील जी का भी सही है और मैं बता दूं किनका किनका किनका किनका किनका किनका और हाँ यानी कि सर्वजीत शेट्टी जी का भी सही है, मतलब बहुत से दोस्तों का जवाब यानी गलत भी है, उनका नाम मैंने नहीं लिया है।

0: बहुत बहुत वेलकम करते हैं अंतरा मस्ती के सेकंड राउंड में। भाईजान कैसे हैं?
1: दुआ है आपकी, मस्त है। आप सुनाओ, आप कैसे हैं?
0: एकदम झकास बिंदास फर्स्ट क्लास, मजे में चकाचक ग्रांडी के साथ और भी आपकी दुआओं के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो बताइए आज आप पहले उसका बता दीजिए जवाब।
1: जवाब एक दिन आप यूनिफॉर्म को मिल जाएंगे।
0: सही,
1: शाहरुख खान का सॉन्ग।
0: बिल्कुल सही जवाब है। और गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: कौन है जो सपनों में आया, टाइटल भी
0: एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू।

0: ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: जी करता है तेरी जुल्फों से खेलूं, जी करता है तुझे बाहों में ले लूं, जी करता है तेरी आंखों को चूमूं, जी करता है तेरे इश्क।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

और अगर आप अपने अपने जवाब लिख रहे हैं, जवाब के साथ अगर गाने का बोल लिखेंगे तो मेरे लिए और अच्छा आसान हो जाएगा, क्योंकि गाना डाउनलोड करने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए प्लीज गाने के अपने जवाब के साथ साथ गाने का बोल जरूर लिख के भेजेंगे ताकि मेरे लिए आसानी हो।

ओके जी, तो मेरे पास जो सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है वो हमारे नंदलाल यादव जी का है। नंदलाल जी के बाद है यानी प्रियंका जी, अरूप चंद जी, अनिल कश्यप जी, मिसाल अंगद जी, जाकिर खान जी, ज्योति खटवड़े जी, पूजा भास्कर जी, और सुनील कुमार जी, सर्वजीत शेट्टी जी, एक साहब और है, क्या नाम है इनका, नाम तो मुझे नहीं, अच्छा यानी कि पर्वत राय जी, अच्छा यानी पर्वत राय जी, नंबर सेव आपका नहीं था, नंबर सेव कर दिया आपका, तो नाम भी आपका मिल जाएगा मुझे। और अजय भगत जी हैं, और प्रेम सिंह साहू जी, अच्छा ओके, और रुबीना नाथ जी हैं, और संजय पटेल जी हैं, आजाद अंसारी जी हैं, ओके जी, और जलील जी हैं, ओके, तो फिलहाल कॉल लगा।

0: नंदलाल जी बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती में, कैसे हैं?
1: आवाज नहीं, आवाज सर बहुत भीतर से आ रही है।
0: मतलब अच्छा मैं आपको यानी मतलब इन व्हाट्सएप कॉल करता हूँ, रुक जी।
1: हाँ
0: नंदलाल जी को व्हाट्सएप कॉल लगाता हूँ।

0: जी नंदलाल जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है अंतरा मस्ती के सेकंड राउंड में।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, और कैसे हैं?
1: बस ठीक है, बैठे हुए हैं, प्रोग्राम ही सुन रहे हैं।
0: बैठे हुए सुन रहे हैं प्रोग्राम, तो खड़े हो जाइए और बताइए जवाब क्या था।
1: जवाब मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है।
0: एक दिल रुबा है, बिल्कुल सही जवाब है। और गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: कागत उड़ गया मीठी बोली बोल के।
0: क्या बात है।
1: कागत

0: सर ये गाना है दामिनी मूवी से।
1: जी मैं सुनवा दिया, ये गाना मुझे भी अच्छा लगता है। बहुत प्यारा गाना है, और सच में जब भी लेकर आते हैं नंदलाल जी बहुत ही प्यारा गाना लेकर आते हैं, ढूंढ कर लाते हैं, चुन कर लाते हैं।

0: माय गॉड, मैं तो गाना में खो गया था। फिलहाल ये सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। तुझसे पहले न कोई आया मेरी जिंदगी में सनम, कोई भी दिल में ना समाया, तुझे तेरे रब की कसम। मुझे तेरे बिना नहीं रहना है, सारी दुनिया से यही कहना है।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

वेलकम बैक। और मेरे पास एक ही सही जवाब पहुंचा हुआ है, वो भी ज्योति खटवड़े जी का। और जवाब है, बता मुझको सनम मेरे, तुझे कैसा मैं लगता हूँ। और देखता हूँ और किसी का जवाब तो नहीं ना है। नहीं यहाँ पे। मतलब एक ही जवाब है जिनका, यानी कि सही जवाब है, और बाकी सबका जवाब गलत है। ओके, तो फिलहाल इनके पसंद के गाने को मैं प्ले कर रहा हूँ, एंजॉय कीजिए ज्योति खटवड़े जी। और संजय पटेल का भी जवाब आया हुआ है, खैर कोई नहीं, आने में देर कर दिया आपका जवाब।

0: और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। मुझको किसी से उल्फत नहीं थी, पहले मेरी ऐसी हालत नहीं थी। आंखों से पढ़ ली दिल की कहानी, तुझ पे लुटा दी ये जिंदगी। बेताबी इस दिल की बढ़ती गई।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना। बजाते रहो

और मैं बता दूं कि अभी तक दो जवाब मेरे पास बिल्कुल नहीं सही आए हैं। एक हमारे यानी सुनील कुमार जी का सबसे पहले और दूसरा अजय भगत जी का। बाकी दोस्तों का जवाब अभी तक जितने भी आ रहे हैं गलत गलत गलत हैं।

0: तेरे लिए कॉल लगाते हैं सीधे सुनील जी को।
1: रब ने मेरे जो मुझसे कही वो बात है मेरे हो।
0: आज के इनविनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। अब आप इन कोई भी गाना सुन सकते हैं, लेकिन पहले जवाब बता दीजिए।
2: जी मुझे ये था, एक मिनट सर।
0: जी देख लीजिए,
2: भूल जा रहा हूँ
0: कोई
2: हर बार। एक मिनट सर।
0: हाँ देख लीजिए, नो प्रॉब्लम।
2: ये था एक तेरे ही चेहरे पे प्यार आया।
0: बिल्कुल सही जवाब है आपका। और क्या सुनना पसंद करेंगे? क्योंकि अभी चूंकि आप भी इनविनर बने हैं, कोई भी गाना सुन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो आपने भेजा है वो भी सुन सकते हैं, या कोई भी सुन सकते हैं जो आपका दिल करे।
2: सर एक उससे जो थोड़ा बढ़िया वाला गाना है सर, तुझे देखे बिना दिल नहीं माने, धर्मेंद्र और जया पर्दा पर फिल्माया गया हुआ गाना सर।
0: तुझे देखे बिना
2: दिल नहीं माने। जी
0: मैं ढूंढ रहा
2: हूँ। तुझे देखे बिना दिल नहीं माने, तुझे देखने के ढूंढू मैं बहाने। अच्छा। ऐसा ये गाना सर।
0: इंसाफ कौन करेगा का है?
2: जी हाँ उसी फिल्म का।
0: ओके ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके इस गाने को मैं प्ले कर दूँ, क्योंकि आप इन विनर बने हुए हैं ना, इसीलिए आप चाहें तो वो भी गाना जो भेजे वो भी सुन सकते, लेकिन ये भी सुन सकते, नो प्रॉब्लम।
2: देख लीजिए अगर मिलेगा तो ठीक, नहीं सर उसी को चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
0: कौन सा गाना नहीं मिलेगा ये बताइए।
2: नहीं आप तो आपके आपको आपकी डिक्शनरी में इतने गाने हैं मुझे पता है सर।
0: तो मतलब आपके गाने हमें मिल रहे हैं, थोड़ा सा डाउनलोड होने में समय लग रहा है बस, और कुछ नहीं।
2: देख लीजिए अगर कोशिश अगर होती है तो ठीक है, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ।
0: अरे कोई नहीं अगर गाना मुझे मिल गया है, बस डाउनलोड होने में समय थोड़ा सा यूनिक लग रहा है
2: आजकल। हाँ सर्वर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है ना सर
0: जी। आगे चलिए, आपका गाना मिल गया मुझे।
1: तुझे देखे बिना

0: बिल्कुल, यानी कि तुझे देखे बिना दिल नहीं माने और तुझे देखने के ढूंढू में बहाने। वैसे ये रहा अगला अंतरा।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। जैसा नाचता मोर, जैसे रेशम की डोर, जैसे परियों का राग, जैसे चंदन की आग, जैसा सोला श्रृंगार, जैसा रस की फुहार, जैसा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा।
2: दोस्तों, आपने सुना अंतरा। अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना

0: ओके, इस बार मेरे पास सबसे पहला यानी कि मैसेज पहुंचा हुआ है यहाँ पे काजल झक्का जी का, अकबर खान जी का, ज्योति खटवटे जी का, और उनके बाद यहाँ पे रूपचंद जी हैं, और प्रियंका जी हैं, अजय भगत जी हैं, और एमडी जलील जी हैं, बिल्कुल इनका भी सही जवाब है, और सुरेंद्र पाल जी हैं, और हमारे इस्माइल खान जी हैं, और संजय पटेल जी हैं, मतलब सभी का जवाब मेरे पास सही है। एक दो जवाब ही ऐसे हैं जो गलत हैं, उनका नाम मैंने नहीं लिया है। और कॉल लगाते हैं। बहुत बहुत आपका वेलकम है काजल झक्का जी, बहुत देर से प्रयास कर रही हैं, अभी आपका नंबर लग गया फाइनली, बताइए जवाब क्या है?
1: एक लड़की को देखा तो ऐसा लगेगा,
0: बिल्कुल जैसे खिलता गुलाब, जैसे इन परियों का राग, जैसे मतलब क्या ही बोले, जितनी तारीफ करें उतनी कम है उस लड़की को देखने के बाद, है ना? बिल्कुल। तो बताइए आज आप इन्हें क्या सुनना पसंद करेंगी?
1: मुझे आज सुना दीजिए, सावन का महीना आया है, घटा से बरसा है पानी, वो माहिया।

0: ओके, और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। ये क्या मुझको हो गया सजन, कभी रोऊं कभी गाऊं, पेड़ से लिपटी बेल जो देखूं लाज से मर मर जाऊं। ये पागलपन कैसा, कब से हो गया ऐसा, बिन बतलाए समझो सजन आज नहीं कुछ कहना।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: का कॉल नहीं लग पा रहा है, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। कॉल नहीं लग पा रहा है मुझे। ठीक है, मैं मतलब मैं ये यानी इनको कॉल लगाता हूँ, यानी प्रियंका जी को।
1: सावन का महीना आया है घटा से।
0: एक्चुअली आपको यानी आपको चांस मिल गया, लक बाई चांस वो बोलते हैं ना, क्योंकि उनका कॉल नहीं लगा इसलिए आपका आपका नंबर लग गया। उन्होंने नो कॉल वहाँ उन्होंने यानी नो कॉल भी नहीं लिखा था ना, इसलिए मैंने मैं उनको कॉल भी नहीं कर सकता है कि नहीं।
2: हाँ, ठीक ही होगा, पता नहीं।
0: तो आज बन गई हैं आप इन विनर, समझ लीजिए। तो आज आप क्या सुनना चाहेंगे, यानी कोई भी सुन सकती हैं, कोई भी गाना सुन सकती हैं, लेकिन पहले जवाब बताना होगा।
2: एक डाल पर तोता बोले,
0: बिल्कुल
2: एक डाल पर।
0: सही जवाब है, सही जवाब है, सही जवाब है।
2: हाँ।
0: तो बताइए आज क्या सुनना पसंद करेगी।
2: हाँ, आप हमें है ना मूवी का तो मैं नाम याद नहीं है, वो जीना तमान का सॉन्ग है मतलब, और वो वाला सॉन्ग सुना दीजिए, और वो सॉन्ग पहले हम सुनाएंगे फिर उसके बाद आप सुनाएंगे।
0: अच्छा अच्छा, ओके ओके।
2: अच्छा सॉन्ग है सर वो,
0: ठीक है
2: ओके ओके। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। चाल है कि

0: नहीं, थैंक यू। ये वाला सॉन्ग सुना दीजिए, पर
1: ओके जी, सुनवा दिया, एंजॉय
0: आप
1: कीजिए।
0: भी ये गाना गुनगुनाना सर। ओके
1: अच्छा, मैं कोशिश करूंगा इस गाने को गुनगुनाने के लिए। बिल्कुल कोशिश करूंगा। ओके जी, चलिए फिलहाल मैं आपके गाने को प्ले कर रहा हूँ, एंजॉय कीजिएगा। ओके,
0: ओके,
1: धन्यवाद।

0: अगला सवाल
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी जैसे तुम बातें करती हो, वो गुल ऐसे शर्माता था जैसे मैं घबरा जाता हूँ। बुलबुल को मालूम नहीं था गुल ऐसे क्यों शर्माता था।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

वेलकम बैक। और मेरे पास सबसे पहला एमडी जलील जी का आया हुआ है जवाब, सही जवाब है। रूपचंद गोयल जी का भी जवाब सही है और ज्योति खडवाड़ी जी का भी जवाब सही है और रवि मोहरे जी का भी सही है और संजय पटेल जी का भी जवाब बिल्कुल सही है। एक साहब और है, क्या नाम है इनका, नाम तो मुझे नहीं पता। दीपक जी का भी जवाब सही है। ओके जी, और यानी पूजा भालकर जी का जवाब सही है, लेकिन इनका कॉल नहीं लग रहा है तो मैं तो इनका कोई फायदा नहीं है इनका नाम लेने से भी।

0: एमडी जलील जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है अंतरा मस्ती के सेकंड राउंड में। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। और अंतरा मस्ती समझ में आया या नहीं, पहले ये बताइए मुझे।
1: आया, समझ में आया। वो जो बोल रहते हैं, जो शब्द रहते हैं, उनमें से किसी एक को चुनना है और उस पर गाना।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ गए। लेकिन इसका जवाब मुझे बता दीजिए, अभी जो आपने भेजा।
1: इसका जवाब ये है, एक था गुल और एक थी बुलबुल, मोहम्मद रफी का सॉन्ग।
0: बिल्कुल। और आप क्या सुनना पसंद करेंगे, ये भी बता दीजिए।
1: सर मैं सुनना चाहता हूँ मेरे सामने गुड़िया जापानी है, कुमार सानू सॉन्ग, अलका याग्निक।
0: मेरे सामने
1: गुड़िया जापानी है।
0: गुड़िया जापानी है, एक मिनट। तो ये मैं पहली बार सुनने वाला हूँ, गुड़िया जापानी। हाँ
1: सर,
0: शायद हो सकता है कि मैं पहली बार सुनने वाला हूँ ये गाना।
1: मेरे सामने गुड़िया जापानी है, ये गुड़िया मेरे सपने।

0: फिल्म का नाम है जी, फिल्म का नाम है दुश्मन दुनिया का। अच्छा जी, ओके ओके ओके, ठीक है, मुझे गाना मिल गया है, मैं बस अभी प्ले कर रहा हूँ, जस्ट ए मिनट,
1: ठीक है,
0: ओके जी, हो गया, एंजॉय कीजिए।

0: और मैं बता दूं कि आरजे आकांक्षा जी के लिए अभी से वो लाइनें खुल चुकी हैं, आप चाहें तो अभी से अपना डिमांड वहां पे रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये रहा अगला सवाल,
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, तेरी चाह तूने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने ये दीवाना किया, जमाने से मुझको बेगाना किया, दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में, ना होश है ना ख्याल है।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: बिल्कुल मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा है रूपचंद गोयल जी का, रुबीना नाज जी का और यानी संजय पटेल जी का, और उनके बाद हैं पूजा भास्कर जी हैं और आनंद लाल जी हैं। तो सभी का धन्यवाद, रूपचंद जी को कॉल लगाता हूँ। रूपचंद गोयल जी, बहुत बहुत आपको बधाई हो और जवाब बता दीजिए क्या है।
1: एक मुलाकात जरूरी है सनम।
0: बिल्कुल एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो अब गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: गाना हॉकिंग पिक्चर है, उसका गीत है जब भी कोई कंगना खन के पायल झनक झनक जाए।
0: जब भी
1: कोई कंगना खन के पायल झनक झनक जाए।
0: अच्छा जी,
1: पिक्चर का नाम शॉकिंग।
0: शॉकिंग का गाना सुनना चाहते हैं? ओके, सुनवा दीजिए, एंजॉय कीजिए।

0: और ये रहा सवाल,
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: आजा तेरी सोनी सोनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं, सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठी बाहों में आके, ऐसा लगा सब कुछ पा लिया है तेरा प्यार पाके।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो

0: जीवन।
1: बहुत बहुत वेलकम है रुबीना नाथ जी अंतरमस्ती के सेकंड राउंड में, कैसी हैं आप?
2: नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, और बताइए क्या हो रहा है?
2: मैं अच्छी हूँ, बताइए। कुछ नहीं है,
1: ऐसे चकाचक ग्रंटी के साथ हैं। तो जवाब बता दीजिए प्लीज।
2: जवाब है तुझे प्यार से देखने वाला।
1: हाँ, एक दिल है। ओके, फिलहाल गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
2: गाना सुना दीजिए, मैं तेरी थी मैं तेरी हूँ, यही सॉन्ग है।
1: मैं तेरी थी मैं तेरी हूँ। ओके जी,
2: देखते हैं फीमेल वर्जन।
1: और फीमेल वर्जन शायद ये फीमेल वर्जन ही है मेरे ख्याल से।
2: नहीं, मेल भी है।
1: अच्छा, तो पहले इसको
2: सुनो। है,
1: एंजॉय कीजिए।
2: ओके, थैंक यू।

0: सकते हैं कि ये गाना नहीं है, तो कौन सा गाना है? लगता है कि मुझे गलती गाना प्ले कर दिया। अच्छा ये वाला प्ले करता हूँ।
1: बचपन की वो गलियां, वो बीता हुआ मौसम,

0: मुझसे मिस्टेक हो जाती है। अगर ऐसा है तो आप मुझे अपना लिंक भेज सकती हैं, मैं आपके गाने को जरूर प्ले करूंगा। फिलहाल मैं सवाल करता हूं और आप अपना लिंक भेज दीजिएगा प्लीज।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, ये गुस्सा तो भूल जाएगी, तेरे होठों पे हंसी आएगी, ये आज हो या कल हो, ये होगा, ये बेरुखी मेहरबानी बनेगी।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: अशोक पाल जी बहुत बहुत वेलकम है आपका अंतरा मस्ती के सेकंड राउंड में, और जवाब बता दीजिए प्लीज।
1: बता रहा हूँ सर
0: जी, बताइए बताइए।
1: एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी।
0: बिल्कुल, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। गाना कौन सा सुनना पसंद करेंगे?
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
0: ओहो, इस तरह आशिकी का।
1: हाँ जी, हाँ।
0: दो गाने हैं, एक अमित कुमार की आवाज में है और एक यानी कि कुमार शानू की आवाज में है। चलिए मैंने सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।
1: ओके ओके।
0: आज का आखिरी सवाल मैं करने वाला हूँ।

0: और ये रहा आज का आखिरी सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। 14 को तेरा संदेशा आया, 15 को आऊंगा ये कहलाया। 14 को आया न 15 को तू, तड़प के मुझको तूने क्या पाया। 16 को भी, 16 को भी 16 किए थे सिंगार।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे। अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं, सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना। बजाते रहो दिल से।

मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, लेकिन सबसे पहले ये विष्णु जी का, महक जी का, और दीपक जी का, और ये रूपचंद जी का, और पूजा भास्कर जी का, संध्या जी का, ज्योति जी का, अशोक पाल जी का, रणवीर सिंह जी का भी।

0: भाई विष्णु कुमार जी, यानी गया बिहार वाले बहुत दिन बाद आए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे, आप कैसे हैं?
0: अरे हम तो एकदम काश बिंदास, फर्स्ट क्लास, मजे में चकाचक हैं। जी जी बोलिए।
1: आज अब सर बना है, सर नियम समझ में नहीं आता है, क्या है क्या नहीं है सर।
0: कोई बात नहीं है, अभी
1: नया एप्लीकेशन पर क्या?
0: हाँ एप्लीकेशन तो बिल्कुल, यानी कि अभी आपके लिए वो नया हो गया है, वहीं पे सब लॉगिन करना होता है, वहीं से मैसेज करना होता है, वहीं से सॉन्ग रिक्वेस्ट करना पड़ता है, सारा चीज एप्लीकेशन से माध्यम से हो गया है। ये शायद हो सकता है कि ये मतलब यानी व्हाट्सअप कॉल वाला आखिरी ही हो, क्योंकि अगर अपडेट आ जाएगा नया वाला तो अगर मैं कॉल लगाऊंगा तो रेडियो आपको रेडियो में ही यानी कि कॉल जाएगा अगले सप्ताह से। जी
1: तो सर जी, इसे एप्लीकेशन क्या है वो रेडियो हॉट स्टार का जो एप्लीकेशन, तो उसमें भी तो मैसेज व्हाट्सएप तो मैसेज ही होता है सर
0: जी। आप व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना होता है, वहाँ पे एक ऑलरेडी उसका यानी कि प्लेटफॉर्म बना हुआ है, मैसेज करेंगे तो सब वहीं पे जाता है ना ये चीज है।
1: सिर्फ खाली रेडियो हॉट स्टार का एप्लीकेशन जो है उसमें?
0: हाँ बस आपको रेडियो हॉट स्टार का एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे सारा सुविधा मिल जाएगा आपको, आपको सॉन्ग रिक्वेस्ट कैसे करना है, या आपको मतलब वहाँ पे चैट बॉक्स में कैसे जाना है, मतलब सब सारे सुविधाएं उपलब्ध हैं एक ऐप में, जो चाहिए सब कुछ मिलेगा आपको।
1: जी जी
0: ओके। और बहुत आपने अच्छे अच्छे गाने सुनाए, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। वो तो गाना मैं आपका एक ऐसा गाना था जो मैं भूल चुका हूँ, एक आपने बहुत अच्छा गाना सुनाया था, मैंने आपसे कहा था ये गाना मुझे बहुत अच्छा, बहुत दिन बाद ये सुनने को मिला, वो गाना मैं भूल गया हूँ, आप ही ने सुनवाया था एक बार, मुझे याद है।
1: कौन सा फिल्म सर? याद नहीं है
0: मुझे, याद रहेगा तब मैं बताऊंगा। वो गाना मुझे बस इतना याद है कि आपने सुनाया था, और वो गाना मेरे यानी कि प्ले लिस्ट में होगा, लेकिन मैं उसको भूल चुका हूँ। वो गाना मुझे बहुत पसंद है, मैं ढूंढता हूँ, मुझे मिल नहीं पाता है
1: ये। सर जी मुझे भी याद नहीं है कि कौन सा गाना था सर।
0: जी जी जी जी जी, खैर कोई बात नहीं, बताइए पहले इसका जवाब बता दीजिए। शायद वो नाले लाले था, नाले नाले मैं चला, ये पता ना मतलब कुछ ऐसा।
1: हाँ मुझे मिला पगला।
0: नहीं नहीं मुझे मिला एक चोर ऐसा कुछ, यानी वो नहीं मतलब, यानी कि कोई और गाना था मतलब, जो मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर कोई नहीं, आप इसका जवाब बताइए पहले।
1: इसका जवाब है 1 2 3 4 चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह।
0: बिल्कुल सही जवाब है। और क्या सुनना पसंद करेंगे भी बता दीजिए
1: सर। अभी आने वाला है राखी सॉन्ग, उसका कुछ सुना दीजिए सर, बिहारी बाबू का।
0: तो बताइए कौन सा गाना?
1: इसका बोल है सर राखी हर साल, ऐसे करे कुछ गाना सर, ये उतना याद नहीं है।
0: हर साल आवेला सवनवा में, ये वाला गाना।
1: जी जी जी जी, जी, जी. जी जी सर,
0: गाना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये, है ना?
1: जी सुनने में अच्छा लगता है सर, पुराने गाना है लेकिन अच्छा लगता है।
0: जी बिल्कुल, चलिए सुनवाते, एंजॉय कीजिए।
1: ठीक है सर जी, ऐसे भी जान लीजिए सर जी, मेरा कुछ नेट नहीं रहा, इस कारण मैं

के बाद स्पेशल कॉल लगाने वाला हूँ 9:30 बजे तक। और अब आरजे आकांक्षा जी के प्रोग्राम में आप अभी से गाने भेज सकते हैं।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे संडे स्पेशल में सुनिए स्टार मूडी चॉइस और कीजिए दिए गए मूड पर आधारित गाने की मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक। तो स्पेशल कॉल में सबसे पहले मैं इन्हें कॉल लगाता हूँ, आई होप इनसे बात हो जाए मेरी। अजय भगत जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है स्पेशल कॉल में, कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छे हैं अमन जी।
1: ओके जी, तो प्रोग्राम सुना आपने और पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन अफसोस आपका नंबर नहीं आया, मतलब आगे पीछे हो जा रहा था। कोई बात नहीं, स्पेशल कॉल
2: जी बहुत मैंने नहीं हो पाया
1: जी। जी कोई बात नहीं, होता है ना। आपने लगातार मतलब हर गाने पर आपने ट्राई किया है, लेकिन अफसोस के नहीं आया है नंबर। कोई बात नहीं है, उसे घबराने वाली बात नहीं है।
2: इस बार फर्स्ट बार फेल हुआ हूँ। आज दिन वाले वंशिका वाले प्रोग्राम में भी मैं पार्टिसिपेट किया था और फर्स्ट आ गया था।
1: अच्छा, आ गए थे, कोई बात नहीं। यहाँ भी स्पेशल कॉल जिंदाबाद है। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे बताइए?
2: आज मैं वही सुनना चाहता हूँ जो आपने स्टेटस में लगाया था।
1: अच्छा, हम आपके हैं कौन?
2: जी जी जी, आपकी बात को मैं दिल से बहुत महसूस करता हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं दिल से।
1: हाय हाय हाय हाय हाय, क्या बात है।
2: बहुत लाइक करता हूँ मैं आपको, समझे अमन जी।
1: थैंक यू सो मच आपके इतना यानी प्यार के लिए,
2: और इसलिए मैसेज वैसेज करता रहता हूँ। आप रिप्लाई भले ना देते हो पर्सनल पे, मगर मैं आपको मेरे मन में जो आता है मैं लिखता रहता हूँ।
1: मैं मतलब एक्चुअली बता रहा हूँ कि मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे अपना पर्सनल मैसेज खोलकर देखने का समय नहीं मिल पाता है।
2: जी जी जी, इसके लिए मुझे दुख नहीं है, मगर मैं मेरे दिल में जो आता है मैं आपको लिख के देता हूँ। आप ऐसा करो वैसा करो, कहें कि हमें भी दुख होता है कि इतना मेहनत करते हैं आप, 4 घंटे लगातार बकते रहते हैं एक तरह से समझिए तो, उसके बाद भी कोई लिसनर इस तरह से बिहेव कर देते हैं, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है। इस वजह से मैंने सोचा था कि कभी पर्सनली बात हो आपसे, इसलिए मैं आज कोशिश कर रहा था कि मैं आपसे बात करूंगा, मगर नहीं हो पाया।
1: आप बात कर सकते हैं, और हाँ, अगर कभी यानी कि टाइम मिले तो आप मुझे नंबर पर भी फोन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना।
2: नहीं, आप एक दिन बताए थे ना, मेरा बेटा आपको बहुत बड़ा फैन है।
1: जी जी जी जी,
2: मैंक आपको कुछ ना कुछ मैसेज करता ही रहता है वो।
1: जी, अच्छा, एक चीज और मैं आपसे यानी कि कहा, आपका बहुत बहुत मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा। थैंक यू इसलिए क्योंकि आपने अपने हिसाब से यानी कि किशनगंज बिहार से बहुत से दोस्तों को आपने जोड़ा है, इसके लिए।
2: जी जी, सब मेरे भाई लोग जुड़ गए हैं, शायरी मारते हैं, खूब हंसते हैं दुकान पे बैठ के, मेरा खूब एंजॉय करते हैं सब बैठ के।
1: तो मतलब आपका स्पेशली थैंक यू इसके लिए क्योंकि आपने बहुत से दोस्तों को जोड़ा है, इसके लिए बहुत
2: जी जी जी जी। मैं सोचता हूँ कि मैं जैसे अपने आप में बिजी रहता हूँ, किसी माध्यम से हो, कस्टमर दुकान में ना भी हो, तो मैं अपने आप में बिजी रहना चाहता हूँ, उस वजह से मैं रेडियो हॉटस्टार का सहारा लेता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है।
1: जी बिल्कुल, ये क्या ही बोले, आप सबका ये प्यार है, मुझे भी अच्छा लगता है आप सबसे बातें करके, मतलब क्या ही बताऊं मैं, है ना।
2: जी जी जी,
1: तो अच्छा लगा बात करके, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया, मतलब समझ लीजिए एक तरह से, है ना
2: जी। मैंने तो बताया कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, यानी कि मैं बहुत लाइक करता हूँ आपको, आपकी हर चीज को नोटिस करता हूँ कि आपको दुख यानी दिल में ठेस कहाँ पहुँची, कब आप खुश है। आज जब आपका प्रोग्राम चालू हुआ ना जिस समय, तो उस समय मैंने आपका आवाज सुना, फिर मैंने देखा कि आप एकदम फ्री है, यानी कि माइंड आपका क्लियर है, यानी कल का यानी कि जो भी था दिल में जी, जी, कुछ जी, भी ऐसा आपके दिमाग में नहीं है।
1: वो एक्चुअली यानी रात गई बात गई, मैं ध्यान नहीं रहता।
2: हाँ, नहीं रखना भी नहीं चाहिए आपको, ये सब ठीक नहीं है जी।
1: ओके, तो गाना प्ले कर दो।
2: जी जी, प्ले कर दीजिए।

0: हेलो
1: जी जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है सुनीता गोप जी। स्पेशल कॉल। नमस्ते, और कैसी हैं आप?
0: ठीक है सर, आप कैसे हैं?
1: एकदम झकास, बिंदास, फर्स्ट क्लास, मजे में, चकाचक। आपको व्हाट्सएप कॉल नहीं किया क्योंकि व्हाट्सएप का नेटवर्क नहीं मिल पाती, इसलिए डायरेक्टली मैंने नंबर पे कॉल किया है।
0: सर दूसरा बार तो मैंने नेटवर्क एकदम बंद हो गया, मेरा गाना सुनाई नहीं दिया, इसलिए दूसरा रंग में नहीं खेल पाए।
1: अच्छा, कोई बात नहीं, फिलहाल आपने जितना खेला बहुत खेला है आपने, और बहुत बहुत आपको बधाई हो स्पेशल कॉल के लिए। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
0: भोजपुरी फिल्म में एक गाना सुना दीजिए सर, कोई भी अपना पसंद का।
1: भोजपुरी?
0: जी सर।
1: तो आप ही बता दीजिए ना, आपकी पसंद बहुत अच्छी होती है।
0: सर ये पुराना फिल्म का है कि हमार दूल्हा कब आई है।
1: अच्छा, जा सब मुझे देखना पड़ेगा।
0: छोड़ा छोड़ा कलाइया हमार,
1: हमार दूल्हा कब आई है।
0: जी सर,
1: हम देख रहे हैं, अगर गाना मिलेगा तो मैं जरूर सुनाऊंगा।
0: गाने के बोल है सर, छोड़ा छोड़ा कलाइया हमार।
1: छोड़ा हाँ, मिल तो गया है गाना आपका, बिल्कुल मिल गया।
0: जी सर,
1: तो सुनवाएंगे जरूर। देखिए तो ढूंढ लिया ना गाना आपका।
0: थैंक यू सर।
1: ओके वेलकम।

0: चालक जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है स्पेशल कॉल में। कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे अमन सर जी, आपका कार्यक्रम सुन रहे थे।
0: अच्छा जी, धन्यवाद है आपका। बताइए आज
1: और आज का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। थोड़ा हार्ड था कुछ गाने, लेकिन कार्यक्रम बहुत अच्छा हो।
0: अरे हार्ड नहीं था, आज जितने भी गाने थे ना वो एक नंबर पर था, एक यानी के शब्द था
1: नहीं,
0: एक
1: मैं पहले जो मैं मुझे दो तीन गाने का मुझे ये समझ में नहीं आया ना, इसलिए मैंने ये नहीं किया, लेकिन बाकी सभी गाने मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे।
0: अच्छा कोई बात नहीं, चलिए बताइए तो आज आप यानी कि क्या सुनना पसंद करेंगे स्पेशल कॉल में?
1: आज हम ऐसा मुझे यही तो गाना सुनने का है जो मैंने आज सुबह ही फिल्म देखी है, क्योंकि मुझे सुबह फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता है, सुबह सुबह टीवी देखना। तो आज मैं वही दिल तो पागल है इस फिल्म में मैं देख रहा था, तो जैसे मैं टीवी शुरू किया तो 5-10 मिनट में वो दिल तो पागल का गाना लगा था, टाइटल सॉन्ग यही गाना मुझे सुनने का।
0: ओके तो ठीक है, मैं आपको यही गाना सुनवाता हूँ, दिल तो पागल है। दिल
1: बिल्कुल आपका आनी अमन सर जी, आपका फोन बिल्कुल सही टाइम पर आया, मैंने आपके ध्यान ही किया था अभी, और खाना खाने के लिए बैठना ही था, लेकिन कहा था कि अमन सर जी का फोन आया तो क्या करेंगे, तो 5-10 मिनट में रुकते है, 5-10 मिनट में रुकते है, तो अभी तो आपका फोन आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो अमन सर का फोन आया।
0: ओके तो एंजॉय कीजिए।

और मैं फिर कह रहा हूँ कि आरजे आकांक्षा जी का प्रोग्राम स्टार्ट होगा रात्रि 10 बजे से, और आप अभी से उनके उनके पास गाने की डिमांड कर सकते हैं सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से।

0: और संजय पटेल जी बहुत बहुत आपका वेलकम है स्पेशल कॉल में, और आज आपने बहुत मेहनत किया है, लगातार मेहनत किया है, लेकिन आपका नंबर नहीं लगा है, सॉरी, फिर भी स्पेशल कॉल। जरा एक काम करता हूँ, मैं आपको नंबर पे कॉल लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बिजी हो रहा है कि नहीं?
1: जी जी, या, जी
0: मैं आपको नंबर पे कॉल लगाता हूँ, जस्ट ए मिनट।

0: आपके द्वारा डायल किया गया नंबर।
1: ओह माय गॉड, इन्होंने फोन कट कर दिया है। नो प्रॉब्लम, पता नहीं शायद हो सकता है गलत जगह नंबर पर लग मैंने कॉल नहीं लगा दिया है। इनका नंबर इनका तभी

0: शायद आपके पास नंबर नहीं है, मैंने नंबर पे कॉल लगाया, वो नंबर नंबर पे फोन यानी कि कट कर दिया गया। हेलो हेलो
1: हो गया
0: जी, अभी अभी मैंने नंबर पे कॉल लगाया था लेकिन वो फोन नंबर पे कॉल लगाया था लेकिन फोन को कट कर दिया गया है। शायद नंबर आपके पास नहीं है क्या? अच्छा कोई कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आप अपना गाना बता दीजिए मुझे प्लीज। आपकी आवाज समझ नहीं पा रहा हूँ मैं जी।
1: मैं भोजपुरी सॉन्ग सुनना चाहती हूँ।
0: जी जी आप बता दीजिए भोजपुरी गाने का नाम।
1: नदिया के बीच जैसे मैया डोले।
0: नदिया के
1: बीच जैसे मैया डोले।
0: बीच जैसे मैया डोले, अच्छा ओके, ये गाना है।
1: और भैया मैं पता है मोबाइल बार बार देखे जा रही थी कि अभी मेरे पास भी हो सकता शायद कॉल आए, और आपका कॉल आ ही गया।
0: जी जी देखिए, जो लोग यानी के पार्टिसिपेट करते हैं वो तो मैं, हमारा फर्ज बनता है ना फोन करना, है कि नहीं?
1: जी भैया बिल्कुल, ऐसे मोबाइल उठा के बार बार देख रही हूँ, आ रहा है यार बट आ ही गया आपका कॉल, थैंक यू।
0: जी बिल्कुल, चलिए एंजॉय कीजिए, गाने को प्ले कर दिया है ना।
1: जी भैया
0: ओके
1: जी।

0: बहुत बहुत वेलकम है स्पेशल कॉल में सर्वेश भगत जी, कैसे हैं?
1: ठीक है जी, थैंक यू सर।
0: और बताइए जी, तो क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: फिल्म रंगीला रतन।
0: अच्छा,
1: गाने को तुम ही हो जाने जा।
0: ओके, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: एक और कॉल लगाता हूँ। जी बहुत बहुत
1: नमस्कार,
0: वेलकम है स्पेशल कॉल में। कैसे हैं अशोक देशमुख जी?
1: सुन रहे हैं कार्यक्रम, सुन रहे हैं आपका ही।
0: जी जी, तो यानी कि क्या सुनना पसंद करेंगे बता दीजिए।
1: गाने का बोल है, आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है, किशोर कुमार का गाया गाना है।
0: आदमी जो कहता है,
1: जो कहता है आदमी जो सुनता है।
0: अच्छा जी,
1: जिंदगी भर वो सदाए पीछा करती है।
0: अच्छा एक मिनट, हाँ मुझे गाना तो मिल गया है, मैं सुनाता हूँ आपको। ओके, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद
1: धन्यवाद धन्यवाद।

0: आपका बहुत बहुत वेलकम है स्पेशल कॉल में। दीपक जी कैसे हैं आप?
1: एक मिनट
0: ओके।
1: अरे फोन आया तेरा तंती में।
2: पलक झपके।
0: नमस्कार और कैसे हैं दीपक जी? बहुत बहुत वेलकम है आपका स्पेशल कॉल में रेडियो हॉट एचआर के
3: जी।
0: तो बताइए आज आप यानी कि क्या सुनना पसंद करेंगे?
3: हाँ पहले तो मैं बता दूं कि मैं दीपक गायकवाड़ जैसे कि आपने बता दिया होगा और मैं सिवनी मालवा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ जो जिला नर्मदापुरम में आता है।
0: जी जी
3: बिल्कुल। और मैं आपका प्रोग्राम अभी सुनना चालू किया और जैसे ही मैंने आपका प्रोग्राम सुनना चालू किया मैं बिल्कुल जबरदस्त फैन हो गया हूँ। बिल्कुल ये प्रोग्राम मतलब ऐसा है कि ऐसा कोई प्रोग्राम सुना ही नहीं मैंने आज तक।
0: अच्छा ओह माय गॉड थैंक यू सो मच।
3: बहुत ही बढ़िया आप प्रोग्राम चलाते हो, बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं सब सुनने वाले।
0: जी बिल्कुल, बस आप सबका आशीर्वाद है, आप सबकी दुआएं हैं, बस और कुछ नहीं।
3: जी सर।
0: तो दीपक जी
3: तो गाने के आप रिक्वेस्ट दूं मैं
0: यानी कि हाँ वो ठीक है, मैं आपके गाने को जरूर प्ले करूंगा। कुछ अपने बारे में बताइए आप, मतलब यानी कि क्या करते हैं और कब से सुनना शुरू किया?
3: सर मेरी क्या है कि किराना दुकान है।
0: अच्छा अच्छा।
3: और सर शाम को थोड़ी ग्राहकी भी ज्यादा रहती है और आपका प्रोग्राम भी मेरे को सुनना पड़ता है, थोड़ा ग्राहकों को मैं कई बार रोक देता हूँ, थोड़ा रुक जाओ रिक्वेस्ट भेजने दो।
0: अच्छा
3: तो ग्राहक उन खड़े रहते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, होता है। हाँ ये सब आप लोग का प्यार है। तो बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे, बताइए आज गाने प्ले करता हूँ मैं आपके लिए।
3: वो तू मेरे साथ साथ आसमां के आगे चल, तुझे पुकारता है तेरा आने वाला कर, नहीं है जिंदगी नहीं है रास्ते, नया नया सफर है तेरे वास्ते, नई नई है जिंदगी।
0: अच्छा
3: जी ये वाला
0: फिल्म का नाम है राजू बन गया जेंटलमैन।
3: जेंटलमैन जी सर।
0: एंजॉय कीजिए, सुनवा दीजिए।
3: थैंक यू सर, धन्यवाद बहुत बहुत।
0: और इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम, तो सॉरी शाम में नहीं, मैं कल सुबह 11 बजे मिलूंगा आपसे। जी बिल्कुल, कल यानी संडे है ना, तो संडे को फंडे बनाते हैं, तो कल सुबह 11 बजे मिलते हैं। फिलहाल आप लोग अभी से आरजे आकांक्षा जी के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दीजिए, गाने के लिए रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दीजिए और सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बनाए। तब तक के लिए।

0: गारे गारे
1: ये जरा बड़ा जी
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: गया गारे गारे
1: ये हम को भटका दिया
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह जी ये सूर ये इन्ना आया है तो ये चतुर नार हम

0: घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुर एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात
2: अपने ही जाल में फंसत जात
1: हम मरत

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो।
1: ए चो

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

जूलियट, लैला मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

मेरे कुछ दर में शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले। हाय कुछ दर में शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले।